0: ये कहानी पसंद आई होवे तो स्टोरिया होड़ी वीडियो सब्सक्राइब करो।
1: Oh yes, another scenic story. I bet it's gonna be good.
2: The Court of Guru Har Rai.